0: चले प्राथमिक लमा गुरुवरयेकु हो लमा मग पेन्वन्नेकु लेस ओबट कुडा जीवित हेट कस्वन्न पुलुवन् ओबट ओबगे वृत्तिय गोडनगा गन्नत ओबगे दनुम बेदा गन्नत विक्टोरिया प्रांते लमैन् सह पौल्वल जीवितवल दिगु कालीन बलपैमक् कति कल हेकिय ओबे वृत्तिय मावत हेट कस्वा गन्न वेडिदुर दनगनीमट vic.gov.au/kinder वित पिविसेन्न मेलबर्न ही विक्टोरियानु रजे विसिन् अनुमत कर ऐत
1: Station sponsor.
2: The World at Night on your local station, Plenty Valley FM. On your local station, 88.6 Plenty Valley FM, The World at Night.